0: ऐसा जोग कमाओ जोगी।
1: इस तरह केड़ा जोग होना चाहिए था? दसम पातशाह कल पातशाह ज्ञान कर देना।

गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्हां ने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ठ जिथे भी कोई रब तो भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगों को जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगों का तीर्थां ते इकट्ठ

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नु आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन लक्ष्मी।

अपनी शक्ति नाल वो जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन वो लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने भगतियां गई भगत भले, भगतियां गई भगत भोले। जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने वो लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने भगतियां नू भगत पाउणी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

घर मंगन जाई बिन दिते किच हाथ न आई ए सुन बचन जुगीसरा पैसा कहते हूं झगड़ा कर लगे ने गुरु नानक नु डराउन लगे अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता

हे नानक जी तुहाडी बड़ी महिमा सुनी, मेरी सुनी नहीं वेख भी लई है। तुसी शक्तियां दे मुजस्मे हो, और कुछ सानू भी विखाओ। सिद्ध बोलन सुन।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नु पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नु अपने चेले नु एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़

चंबेली दा फुल छोटा जिहा ओ जिहड़ा दुध दा छन्ना लैके आया सी ना ओदे ते चंबेली दा फुल रख दिता। जे वड्डा फुल धरदे ते हो सकदा सी दुध डुल जांदा। गरीब नवाज पातशाह ने उन्हां नूं इशारे नाल समझा दिता भई हे फकीरो हे पीरो जिवें ए दुध उपर चंबेली दे फुल दा कोई असर नहीं होया दुध ओदा ही है। मैं तुहाडे विच आ के ते ए तुहानूं महसूस नहीं होण देंगा भई मैं इत्थे कोई रहन आया या पीर बनन आया। नहीं, मैं ते तुहानूं मिलन आया।

एक लोभी पुरुष पदार्था विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी बसुधा ज्यों बसता, साध संग जिन हो मैं मारी नानक तांकू मिले मुरारी। भाई रब दी प्राप्ति तो उन्हां नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ये लोकां नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां माला फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला पैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे हन कि ये भगती भाई परवान नहीं, उसके इस पखंड नूं देख के ता फरीद जी ने यह शलोक उचारण किया, फरीदा जां लब ता नेहो क्या, जिथे लोभ है उत्थे नेहो क्या, उत्थे परमेश्वर दा प्यार की होना है, नेह की होना है, उत्थे ता केवल माया दा ही प्यार है। लब ता कूड़ा नेहो किचर घत लंघाइए, छप्पर टुटे मेहो। हे भाई जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लब करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है ता सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है। ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा। ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे ता फिर तेरा प्यार कादा होया। ता फरीद जी कहंदे आ ना गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला ता भिजे कंबली रहा ता टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी ता उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख।

के काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन करदियां, मैं तां अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे तां मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हैं, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं, जंगलां विच असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

दम आया प्रहलाद जब खुद राख ले हर जियो हर नाथ शुमार बजाया गुरमुखानु प्रतीत है हर जियो मन मुख पर भुलाया हर जी

नाही कीता दौड़े सो करे तिस बिन किछ नाही परताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ गया।

पानी निकल रहे हैं उस फिर की समाप्ति है। चल चलो मार्ग को भी मिटे भाव जब भी है। हर ज्ञान से सर्वे

0: साथ साथ तीर्थ पास किए, जैसे आठ सत तीर्थ परस किए, युग चार चलो कैलाश
1: जिना गुरमुखा दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत विच बह के जपते हैं सतनाम, संगत विच बैठ के वाहेगुरु जपन दा किड्डा वड्डा महात्म है। पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नू जोड़े, जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए, युग चार चढ़ो कैलाश रहो, जैसे कोट जन्म

0: सतगुर कोट पहना आगे हुए लेत है।
1: तू एक कदम सतसंगत वाले चलना है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमां अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची है। किन्ना कदमां ते लैण आउंदा है, कदों गुरु लैण आउंदा है। साहिब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जह मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम तू गुरु वल एक कदम रखता है, गुरु तैनू करोड़ा कदम अगो लैण ले आ रहा है। क्यों? ये मेरा है, ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लई साहिब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नू बना, ओ तेरा सच्चा मित्र है जिहड़ा इत्थे भी ते दरगाह विच भी आखे भाई ये मेरा है, भाई इस दा हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल, चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खरे। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद सिंह। एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा, ऐसे गुरु तो सदके जाई, ऐसे गुरु तो बलिहार जाई। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है। पर जोत
2: काहे को दौलत है, तुमरी सुध सुंदर सिरे पदमा पतला है। And it's that same message. Why are you wandering? Your husband Lord is so beautiful. God has no lust, no anger, no greed, or worldly attachment. No illness, no fear. God has no body, but he bears love for all. And his love is without condition. He is without home and cannot be destroyed. God gives to those who know it and to those who don't. He gives the earth, he gives the heavens.

कांगड़ा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा और कांगड़ा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा देता कि माया दे सारे जतन किसे काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बादी सुर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।

पहली राती फुलड़ा फल भी पिछा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात। ए दात उन्हां नूं ही मिलदी है भाई जो नींदर दा त्याग करदे हन। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन भाई जागदे तां होर भी कई हन, चोर भी जाग रहे हैं, कलबा विच बैठे हुए प्याले पी रहे हन, साकत पुरुष भी ओ भी जाग रहे हन, हॉस्पिटलां विच हाय हाय करदे मरीज भी जाग रहे हन, भोगी भी जाग रहा है नरकां दा अधिकारी बनन दे, ओ भी रातां जाग के भोग विलास कुकर्म कर रहे हैं। पर हजूर कहदे ने सारियां जागना विचों उत्तम जागन है जे तू प्रभु भगती करे, जे उस मालक दा नाम जपे, जे उस मालक दे चरणा विच जुड़ के जपे श्री वाहिगुरु। जागना जागन नीका, सारियां जागना विचों उत्तम जागन केड़ा है, हर कीर्तन में जागना। जागरण करना है उस मालक दी भाई, सिफत सलाह कर, ओदे गुण गा, ओदा कीर्तन करेगा, तेरा लोक परलोक

तान गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हैं। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार हां, असी कूड़ियार हां, जो भी बचन करदे हां उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलनहार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते तां जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां, क्योंकि नाम ना